पसंद है तो दो दो हाथ उठाओ। वाह वाह भाई वाह। जैसे हाथ उठाने में एवर रेडी हो गए ऐसे पसंद है हाथ उठाओ।

0: भावना से टोकने के रूप से नहीं पूछना। शुभ भावना से एक दो की सहयोगी बन, एक दो को आगे बढ़ाने की शुभ भावना से इशारा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: दीवान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा सुनो, पापा और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, बाप कहते हैं रोब क्यों किया, मैंने नहीं किया लेकिन क्रोध कराया गया, किया नहीं कराया गया मुझे। अभी बाप क्या कहे, फिर क्या कहते हैं अगर आप भी होते ना।

0: से साकार तन लेके देखो। अभी बताओ ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे? बाप को फिर भी रैप दर्पण नहीं पड़ता। कहते अच्छा अभी माफ कर रही है लेकिन आगे नहीं करना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जो सदा खुश रहते हैं वो अधूरा, सदा खुश, कोई बात हो जाए तो भी खुश।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर। मैं पाप का और पाप मेरा, ये निरंतर विजय सफलता की विजय।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा के पास पुकार और दुख की आए बहुत सुनाई देती, आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले, तो वर्षा लेने वाले को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? वैराग, बेद का वैराग और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों क्या के क्यों मैं टाइम नहीं देना। अबे हे बाप दादा के सिक्की लदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले हो, लाइफ सदा काल होती, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु दयालु दुखहर्ता सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो, दुखियों के दुख के आवाज तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक विश्व को दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा धन मान धन जो भी है, कुमारों के पास तो धन ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो भी है सब आपका है। ये वादा किया है। अच्छा दिला रहे जी, पक्का किया है। धन भी मन भी धन भी और संबंध भी सब आपसे, ये भी किया है किया। अच्छा तो जब धन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर मेरा पन है कुछ होता ही क्या? धन मन धन जन सब बाप के हवाले कर लिया। जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, मन मेरा है, यूज़ करना है मेरा, समझ के है मेरा।

सब एक शब्द याद करो मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा बाप की ये आज्ञा है या नहीं है वो सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वो सदा बाप को सुतई याद होता है, सुतई प्यारा होता है, सुतई बाप के समीप होता है। तो चीख करो Yeah.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी बच्चे जो भी चलते रहते हैं वह उड़ते रहते हैं, दोनों बाप के प्यार में अच्छी मार्क्स ले रहे हैं। संपूर्ण बनने में, संपन्न बनने में अलग बात है, लेकिन बाप से प्यार है somehow।

ser.

Chitelba.

0: Essay. Bob Gebhardt. Lekin sirf chek karna koi sane mein leakage nahi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

so

0: Saral, yedi saral, vani. Saral, vritti saral, drishti.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो बच्चा हसूर के हर्षरी मत हासर हसूर कर चलता है, हर कदम में जी हाजिर।

Сырные. Дорщик тебе. Харсаме. Хасыр, хасыр. Нейкерсық.

0: Úsame.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सिर्फ एक बात याद रखना, ऐसे नहीं हो कि सेवा और स्वउन्नति में बैलेंस में अंतर नहीं है। प्लान प्रैक्टिकल में करने के बाद ना तो सर्विस में बिजी हो गए ना, इसीलिए स्वउन्नति में अंतर आ गया, ये नहीं कहना। दोनों का बैलेंस सदा रहना। क्यों? दूसरों की सेवा करो और स्व की सेवा नहीं, ये अच्छा नहीं। दोनों का बैलेंस रखना ही सफलता है। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप सभी अनुभवी के पाप का निस्वार्थ अविनाशी सने हर एक बच्चे को हो जाता है।

0: Santa, ese
1: So

याद करने में सहजी।

Bună nevălie!

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, सभी बच्चों को आज के

Essay.

अब सुनेगा सागर।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो,

piedra. Atmak piedra.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले, बाप ने कहा और बच्चे ने किया, हर कार्य में चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे सम्मत संपर्क में फैमिली लाइफ वालों, आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वालों, फैमिली का अर्थ होता है एक दो के जानना और एक दो को समझ कर चलना। परिवार में भी ठीक हो और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, नहीं सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, पिर्चा तो बनती जाएगी, साधारण पिर्चा, लेकिन अभी नजदीक वाले वारिस क्वालिटी बना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज प्रेम के सागर

Salaren blir mer.

Nurse.

0: करने में मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत का फल खाते हैं। आप सबका भी विशेष प्यार है ना, स्नेह है ना, है स्नेह सकते हो किसे, कोई तुलना नहीं हो सकती। आप सबका एक गीत है, न इतने तारे है न सागर में जल,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: So

अभी इसकी आवश्यकता

shit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये सब साधन आप बच्चों की सेवा के सहयोग के लिए नहीं।

0: सकती, इतना है कोई बिजी, ऐसा कोई बिजी है जो 5 मिनट भी नहीं निकाल सके, 5 सेकंड चलो, है कोई ऐसा?
1: Balance. आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा चाहते हैं एक एक बच्चा ऐसा खुश निमा खुश नसीब दिखाई दे चेहरे से चलन से क्योंकि समय पर इसके लिए बाप दादा चाहते हैं कि अभी से लक्ष्य रखो, जैसे अभी ये 75 वर्ष के कारण सबको उमंग
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी भी कमजोरी आ जाए, आने नहीं देना। गेट बंद, गेट तो पता है ना, बंद करो, डबल बंद, डबल ताला लगाना। आजकल सिंगल ताला नहीं चलता। एक याद का, एक मन को सेवा में बिजी रखने का, ये तो अलमेटी ताले लगा देना। गाडरेज का नहीं गाट का।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आराम का अर्थ है आराम फिर करना। आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना, वो आराम नहीं करना धन्यवाद।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कुछ भी हो, आपका काम है परों तक पहुंचाना, पहुंचाया
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: स्मृति सेकंड में

الشجرة. Say.

क्या प्राप्तियां होती है। स्मृति ने सम्रा

0: ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, परमात्म पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्म पालना सारे कल्प में
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है, उसका कारण क्या है?
4: Say it.

0: स्मृति स्वरूप है और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आदि अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप सोचना स्वरूप नहीं हो, इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मुहूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

समृद्ध रहे, कितने सारे

0: क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती। आप सबका मन भी गए और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चे क्या करते हैं, कोई कोई सब नहीं, जो वरदान मिला उस वरदान

Merci

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प क्यों कमजोर हो जाती है जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा है। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है, लेकिन क्या है? लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आते हैं बीच में, लेकिन आ जाते हैं, आ जाते हैं। ना नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने एक बात नोट की है, मेजॉरिटी प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वो एक शब्द क्या है टीचर्स, एक शब्द क्या है? बोलो टीचर्स, क्या है? पांडव बोलो, क्या है? एक शब्द है, आ गया, याद तो आ गया ना? आ गया याद, आ गया। अच्छा, एक शब्द है अपमान के रूप में भी मैं आते हैं, और कमजोर करने में भी मैं आते हैं। मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वो ही राइट है, वही होना चाहिए। और जब होता नहीं है ये अपमान का, मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाते हैं, और मैं करता है, और मैं दिल खुश भी करता है और अपमान की निशानी जानते हो क्या होती है। कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अपमान अंश मात्र भी है उसकी निशानी क्या होगी। वो अपमान अपना सहन नहीं कर सकेगा। अपमान अपमान सहन नहीं करे। शराबी कोई कहेगा ना ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ तो अपमान लगेगा। ये अपमान की निशानी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वर्तमान समय और स्वयं

isso.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, देखते हैं पुरुषार्थ बहुत तरीके से करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं है, लेकिन समय अचानक

सोचते हैं हर बच्चे को कहते हैं अटेंशन प्लीज। हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क्स तो होना चाहिए। नंबर थोड़ा सा पीछे है वो बात अलग है, लेकिन अटेंशन है, परिवर्तन भी है, ये चीज अलबेलापन तो नहीं आता। हो जाएंगे ये क्या बड़ी बात है। इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। तो बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ में मेजॉरिटी खुश भी है, लेकिन बीच बीच में माया भी अपना

0: किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अटेंशन पूरा हो, ऐसे नहीं सोचे ये तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। कभी एक नंबर की कमी से भी बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए बाप दादा एक बच्चे को भी साधारण पुरुषार्थ में भी देखना नहीं चाहिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: शुभकामना के, तो इतने पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। अच्छा बदल नहीं सकते हो। सेकंड नंबर, अगर आपकी शुभ भावना शुभकामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्वेश्चन में चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती, नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो, बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतिता है, चाहे पापी है, चाहे साधारण आए, बिना वृत्ति वाले, बिना भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया। शुभ भावना रखी ना, मेरे हो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, ये शुभ भावना रखी ना, शुभकामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा, ये पापी क्यों आए हो, शुभ भावना रखी मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभकामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकिलती बहन, परिवर्तन हो जाए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जय छोटी।

छोटी छोटी एरिया वाले भी आपको लेना दे सकते। हमारा बाप आया, आपको मालूम पड़ा हमारा बाप है, क्योंकि सबका बाप है ना। तो आपने क्यों नहीं बताया? इसलिए चेक करो अपने एरिया के चारों ओर, संदेश पहुंचे है, फिर आपकी जिम्मेवारी पूरी। ऐसे नहीं हो कि छोटी किसी को भी बेच के कम से कम पता तो पड़े कि हम सब का बाप आया है। समय अचानक आना है, पता के नहीं आएगा। अपना चारों ओर संदेश देने का कर्तव्य अवश्य देखो। मानो आपकी एरिया में कोई सेवा नहीं है, एरिया में तो जो साथी एरिया वाले अपने एरिया को चेक करना, चाहे छोटे ही गली है, साधारण लोग है, लेकिन बच्चा तो है ना, बाप आया है ये पता तो होना चाहिए।
वो लेना नहीं रह जाए, हमको तो पता ही नहीं पड़ा किस एरिया की तो नजदीक होगा ना। क्योंकि अचानक कुछ भी खिटखिट शुरू हो सकती है। अपना फर्ज आसपास का एरिया देख चेक करो कोई रही हुई तो नहीं है। अगर दूसरे की एरिया है तो उसे राय करो, वैसे बिना

0: के अपने एरिया को चेक करो रायगढ़ के पड़ोसी से। उस द्वारा कराओ। लेकिन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, दो शब्द साथी और साकी, जब बाप दादा साथ है तो साकी बन की सीट सदा मजबूत रहती, कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है। साथ है लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते, किनारे कर देते, जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पर जाता है या कोई ऐसी बात होती है ना, तो साथ का भी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते ऐसे। साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो, कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कहेगा कोई, कोई नहीं कहता, सब कहते हैं मेरे साथ है, ये भी नहीं कहते कि तेरे साथ है, हर एक कहते हैं मेरे साथ है, मेरा साथी है ना, ऐसे मन से कहते हो या मुख से, मन से कहते हो, पीछे वाले मन से कहते हो, हाथ अच्छा उठाते हो, हाथ हाथ हिलाती है माना हाजी, बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठी है और अपने परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाती है जो देखती नहीं है कि साथ में कौन है। बाप भी क्या करते, बाप भी साखी हो जाते, साथी से साखी बन के खेल देखते, ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो, बाप को अच्छा नहीं लगता। तो साखी पन का तख्त चोरो नहीं, जो हम अलग अलग बुशारत करते हो ना, उसमें थक जाते हो। आज मन सागा किया, कल वाचा का किया, समान संपर्क का किया, थक जाते हो। एक ही बुशारत करो, साखी का तख्त नहीं छोड़ना और कुछ दिमा तख्त नशी साखी बन के तख्त नशी आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर तख्त नशीन हो। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेंगे, नीचे तभी रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। और तब कोई को भी दबा दो तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना अंदर ही अंदर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चेक करो ज्ञान स्वरूप बनाओ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बनाओ। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वो लाइट और माइट वाला यथारथ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी आप और बाप कंबाइंड है, तो कंबाइंड है तो सिंगल हुए क्या? लोग के जीवन अलग चीज है, लेकिन ब्रह्मांड जीवन में कंबाइंड रूप में ऐसे कंबाइंड हो जो कोई भी अलग कर नहीं सकता। ऐसे कंबाइंड होना, कंबाइंड होना क्या अकेले हो, कंबाइंड हो सदा बाप हर कार्य में सहयोगी है, साथी है। ये नशा रहता है ना, कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते, नहीं ना समझते हैं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अब छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगा। जैसे देखो मक्खी आती है, मच्छर आते हैं, ठहरने देते हो, फौरन उड़ा देते कि बैठने देंगे। अच्छा मच्छर पले आओ,

0: आप याद करो मेरा काम भगाना, वो भी आपको सिखलाती है कि मैं आना नहीं छोड़ूंगी, आप विजय पाना नहीं छोड़ो। तो क्या अभी छोटी छोटे मच्छर और मक्खी को आने नहीं देना? स्थिति के आगे ये छोटी छोटी चीजें क्या है?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा भी बच्चों को मधुबन में देख खुश है। कुछ भी हो वे ना, कोई भी ऐसे

extra. بچوں کے من میں خوشی کی خوراک

0: 起来，把头发
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Hoş geldin. Abi, hoş geldin.

talk about.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे, नाचो गाओ, आपके ब्रह्मांड जीवन है, खुशी में नाचने की और अपने भाग्य
0: रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है मेजॉरिटी, ये देख के बाबा बहुत खुश होते। खुशी कभी नहीं कमाना, बात होती है, लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए? खुशी हर एक की अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती है, वो भी पेपर आता है, तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है वो पेपर में सदा पास होते, उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ही रेडी
2: ठीक है तो।
1: ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी ये है कि उनके शिकिल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती। कितनी भी बातें हो जाए, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी है अलौकिक में भी, लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वो आगे से आगे कदम बढ़ाता रहते, और बाप उन बच्चों को देख सूखम में उनके ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उन्हों को भी महसूस होता है बाबा का प्यार मेरे से। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत है और सदा ही खुश रहेंगे, जो नहीं भी है तो भी सदा खुश रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृद्धियों
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वरदान दिया सर्वशक्ति।

बच्चों के लिए प्रॉपर्टी।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बेफिक्र बच्चा का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेला पन और के हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेला पन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी सच्चाई की प्रेम की रस्सी

Der Junge geht nach.

0: मिठाई बहुत प्रिय।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: प्रोग्राम तो बड़े

0: Focaui. Kam se kam 108. 7 में 7 16,000. लेकिन कम से कम बाप दादा इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसका रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो, क्योंकि एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समय बुलाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे बिना बिना सेंटर पर जाए। किस देश का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो तो सकता है ना, थोड़ा टेंशन देंगे निकल आएंगे, 108 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते। कितने भी निकालो जरूर, क्या है प्रोग्राम हो जाते हैं लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। और निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शिवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, वो स्वार्थ है सेवा नहीं। और नीचे ऊपर होती है निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टर्बन होती। सभी एकदम न्यारी और प्यारी बन करती, स्वार्थ से न्यारी और सर्व के संबंध में प्यारी, चारों और अटेंशन प्लीज।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं माया, अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं

Sad.

Shh.

Cierto.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की पट्टी की और पांच ही दिन लगातार कोई भी मिस नहीं हुआ। आज शुरू भी की और अंत तक आपके सामने, तो ये पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ। चलो तो जाने हो सेंटर पर कोई एक सखी को साथ बना दो और अपने बड़ी को सुना दो। तो क्या है, पट्टी करेंगे ना, विशेष नियम बनाएंगे तो उसका मदद मिलेगी। तो बाप दादा को अच्छा लगा। अभी सहज पुरुषार्थ हो गया ना, अभी वहां जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर 1 लेना।
2: दूसरों को कराएंगे
1: भी और अपना अनुभव सुना।
3: Thank you.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता, मुस्कुराहट तो होनी चाहिए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वाह पुरुषार्थ, वाह।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शिवा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Let me।

Adanino. ये आदत के मेरे पन Yes.

छोटा सा फर्क है।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो बाप दादा खुश है, हाथ उठाने में होशियार सभी है।

就不见。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो आप सबको पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का सलोखन सब कर ले हमें बाप दादा चला रहा उसके हुक्म से हर कदम चला रहे। अगर ये समझ
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही। उदास नहीं बना, खर्चा तो किया, प्रोग्राम भी किया, लेकिन आया कोई नहीं, स्टूडेंट्स नहीं पढ़े, कोई अर्जा नहीं, आपने तो किया ना, आपके हिसाब किताब में जमाओ और उन्हों को भी संदेश मिल गया तो टाइम सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो, स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। घबराओ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कई बच्चे ऐसे होते कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी ये हुआ, किसे योग था और कोई है क्या जिसे योग है और सदा रहेगा, बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है, तो अगर कोई आया नहीं सीजन का फल सीजन आएंगे, दिल शिकस्त नहीं हो, क्योंकि श्रीमत को तो मानना है, श्रीमत

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे समन संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बन।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Scheiße.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Spirit Santo.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ। याद आ रहा है परम धाम, अनादि काल से आपकी झलक फलक यारी जैसे आकाश में देखा हो, सर्वा

Chama. Ruani Raeliti. Purity Chama. Me.

सारे क्लब में देवताई स्वरूप की रॉयलिटी और किसी की रही है। Sure.

0: सारे क्लब में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रही है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: क्योंकि यज्ञ सेवा

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: टीचर को क्या चाहिए? सेंट्रल अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंट्रल थोड़ा रहने लायक तो अच्छा। और जो साथी है वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, पापा की पन्नाली अच्छी हो, अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल रखती है थोड़ी। फिर समझती है कि क्या करें, ये मदद करता ना, अभी वो चला गया, मदद कर जिज्ञासु था वह पाप है। तो उस समय कौन दिखाई देते जिज्ञासु या पाप? पर आ गई, या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है, तो जिसके कैचिंग पावर और वाणी में किसमें मिटाज होता है और किसमें स्पष्टता होती है, बोलेंगे एक बात, आप भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, लेकिन योग की बात जोड़ो, सिर्फ बोल में भी किसमें मिटाज होता है, किसमें स्पष्टता होती है, किसमें कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ की मिसाल वगैरह कैच करके सुनाती है, तो इसीलिए उनका नाम भी हो जाता है, कौन चाहिए फलानी चाहिए, कौन अभी फलानी है, चाहे योग में भले कच्ची भी हो, लेकिन इस पर नंबर फाइनल नहीं होने, जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं दियोंगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट बनाए, सेंटर बनाए, योग्य कितनों को बनाए, सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन आत्माओं को योग्य कितनों को बनाए, नाम हो गया सेंटर की इंचार्ज और 30 में से 15 हिल रही है, 15 ठीक है, तो क्या हुआ, फायदा क्या, सिर्फ यह नाम हुआ, सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र, लेकिन नंबर इसे नहीं मिले, फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्ति रही उसी प्रमाण मिलेंगे, इसीलिए ये भी चाहिए चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा, रोज ही देखते रहेंगे कि फलानी जगह हुआ मेरे को फिर भी नहीं मिला, अभी देखो परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेंगी, तो मुख्य बात है निश्चय को, जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो, कहने में तो सर्वशक्तिवान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में टाइम पर आना चाहिए।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Ocean Valley Center School.

मेरे बाप दादा 20% छुट्टी देते है मंसूर, मंसूर है देवे, ये काम देवे। अच्छा 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातें को नहीं देखना, पास होना है ये याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास हर एक सच्ची दिल, साफ दिल स्वप्न में भी संकल्प वाणी और कर्म में पास हो के दिखे। हो सकते हैं, हो सकते हैं टीचर्स बताओ, हो सकते हैं 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए संकल्प भी वेस्ट नहीं। युद्ध नहीं विजय, 15 दिन के फुल विजय मुश्किल है कि इजी है? इजी है, हाथ उठाओ, इजी है, इजी है। बाप दादा ये 15 दिन के रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकते हैं, कर सकती है ना, 80% लेना ही, फिर भी बाप दादा

0: Geladas.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: So

0: Samanda Samparaksito. Lekin koi bhi atma vanchit nahi re. Tata bano rem dilban. Chila re.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Estol sadan hari ko tie esa koi bachcha nahi hai jiske paas khana pina rehna iske sadan nahi ho sabke paas आवश्यक साधन सबके पास है।

साधनों की अभी कोई कमी नहीं है।
Cristiane. Cioè, vado un po' di via lì che... E cioè... Se vuoi...

found.

fish.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: यज्ञ में हर एक पाठ अपना अपना आवश्यक, कोई भी एक निमित्त सेवादारी अगर मिस होता है तो ऐसे नहीं मालूम नहीं पड़ता है। हरे का पाठ अपना अपना महत्व का, कोई का भी पाठ अगर मिस हो जाता है तो फर्क पड़ता है। ये पाप का वरदान एक एक कामन पाठधारी को भी, जैसे भंडारी वाले है तो कामन पाठ, लेकिन भंडारी वाला नहीं हो तो काम नहीं चले, सफाई वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले, उसको समझना चाहिए कि मैं भी विशेष निमित्त हूँ। ड्रामा ने हर एक को चाहे छोटा सा कार्य, लेकिन वो भी जरूरी है। पांच अंगुलियां है, एक अंगुली भी मिस हो जाए तो फर्क पड़ेगा। तो यज्ञ की यही विशेषता है, जो भी जिसको पाठ मिला है ना, वो बहुत बहुत बहुत जरूरी है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा पाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवादारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो, ये वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वो चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो आपका चेहरा खुशनुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सन्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान, कभी चेहरा मुड़ जाया हुआ, अगर आप मुड़ जाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना, ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पीठे पीठे बच्चों को नमस्ते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पाप सेवा के बिना रहते रहते, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना पाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते है, लेकिन मेहनत से अटेंशन से। और पाप के लिए है क्या, परम आत्मा के लिए है। आत्मा है, नंबर वन आत्मा है तो है। स्वयं बच्चों के याद के पाप रह नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप की प्रतिज्ञा सब कहे

0: ये कार्य करने वाला कौन? भगवान आ गया, हमारा बाप आ गया, अभी ये वासना अभी ये कोशिश कर ब्रह्मा कुमारियों तक पहुंचे। ब्रह्मा कुमार कुमारी अच्छे, लेकिन वर्तक्यता तो होनी है, तो ऐसा कोई तपस्या करो, सेवा का प्लान बनाओ जिसमें ये सिद्ध हो जाए, बाकी जो चला रहे हो वो ठीक चल रहे। हर एक अपने अपने सेवा अच्छी कर रहे, बाकी जो परिवर्तन लाना है वो सभी के ध्यान पर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बार कहते हैं बाबा, आज वो चैन बाबा भूल गए। बाप दादा सुन के कितना आश्चर्य लगता होगा, भूल गए। 63 जन्म भूले, अभी भी भूल गए। जन्म और छोटा सा जन्म, 21 फुल जन्म भूल गए, अभी भी भूलना रहा हुए। इसीलिए अभी समझ जाओ, माया को कभी कभी खातरी भी कर देते। कहते हैं हम समय पर हो जाएंगे ध्यान, अभी तो टाइम पड़ा है ना थोड़ा, अभी टॉयलेट का बोर्ड नहीं लगा है ना, हम हो जाएंगे। और माया भी सहारा देख करके खातरी चाय पानी पीती रहती। माया के फॉलो फादर के बजाय फॉलो माया कर लेते। पुरुषार्थ ये ना संपूर्ण थोड़े बने हैं, ये तो होता ही है ना, ये माया कोई फॉलोअर बनना। तो अभी बाप दादा कभी भी बाप दादा चक्कर लगाने आते हैं तो सदा शिकल देखे, तो कैसी शिकल
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के गर्भों के गति को चेक किया, पुरुषार्थ के गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया, तो रिजल्ट में क्या देगा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न, जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है, इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता, क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रही, फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया, समझने लगे हैं किस में मेरे कोई नुकसान है, समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: से देवता बीच में

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जाएंगे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामिक रामी नहीं सेवा दर्जी हो अच्छे, लेकिन नाम नहीं है आपका। लेकिन बाप के पास तो नाम है ना, जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपके नंबर आ गए। क्यों कि बाप दादा ये नहीं देखता, हिसाब रखते हैं, चांस नहीं मिला आप राइट हो, लेकिन आपको चांस नहीं मिला तो वो भी नोटिस है। और मांग के चांस लिया वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्स सुख्यम हिसाब किताब। इसीलिए निर्स्वार्थ सेवादारी, अपना स्वार्थ नहीं, कल्याण का स्वार्थ। और दूसरा समझते हैं कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है। अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी शेयर उसमें जमा है, चाहे आपने नहीं किया, लेकिन दिया किसको चांस तो उसमें भी आपका शेयर जमा होगा। क्योंकि सच्चा डायमंड बनाना है तो हिसाब किताब समझ लो, ऐसे लंबे नहीं चलो। ठीक है, हो गया दिन बहुत सोचो में हिसाब किताब का चोपड़ा, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिक
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल निकलना ही।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yeah.

बच्चों को बाप दादा नहीं ब्राह्मण परिवार में आने की बहुत बहुत अपने तरफ से।

0: por Marimarco. Dictolía. Babdata Samaste. Que abchai.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सबने अपना अकाउंट रखा, जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है, नियम परमान काम चलाओ नहीं, यथारत रूप से हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, ऐसे भी रखा है। एक्यूरेट बहुत थोड़ों ने लिखा है या रखा है, फिर भी

0: usanamare oskopatramals vare ye extra lift bab dada ne apne taraf se di to final paper mein aapki ye marks jo hai wo jama hogi pass with honor honne mein madad milegi लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है कोई भी कारण से है तो अलबेलापन और तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं रखा है कि फिर भी एक मास अपना अकाउंट अभी से रखो और अगर अभी भी एक मास एक्यूरेट अकाउंट रखेंगे नंबर वन जरूरी श्रीमद न मानने से मार्स तो कट होती है ना, अंत में जब आप अपना पोता मेल ड्रामा अनुसार दिल के टीवी में देखेंगे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा आपका साथी है, जहां भी मुश्किल आवे उस दिल से कहना बाबा मेरा, बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद कर। बाबा भी बंदा हुआ, सिर्फ दिल से कहना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसे वो माइक वाला जिसके आवाज पे ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है। चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज पे ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वो जिसके आवाज पे ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो किसे भी
2: समाज में ही करे। नहीं, माइक तो बड़े आवाज वाला चाहिए।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे आप बाप को याद करने के बिना नहीं रह सकते, वैसे बाप भी बच्चों को याद करने बिना नहीं रह सकते। बाप भी मर्ज कर

को देख रहे हैं और बच्चे बाप को देख रहे हैं। सभी सदा खुश जो कभी कभी खुश रहती है और कोई सदा खुश रहती, सदा खुश रहती।

बच्चों का कभी भी कोई बात हो जाती है तो वो भी भूलता नहीं है, बाप के पास पहुंचता है। ये नाता ही है।

Yo te...

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
0: सत्यम शिवम सुंदरम। जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे, धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो, पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है
2: आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है ट्रांसपार्टी।

0: شهرت كبرال لفوت برما بين بين بارد بجاري ادوانس بارتي كب بارد ابي تغ قبطه آپ سوچتے ہو نا کیا کرے وہ آپ لوگوں کا آہوان کرے کہ سمبودھن بن دیویا جنم دوارا अपने पार्ट में कौशल ये समझती नहीं है कि हम संगमयुग से आए दिव्यता है पवित्रता है परमात्म लगन है लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं ज्ञानपन है लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में तो आ जाए लेकिन इनों का पार्ट शक्ति है ज्ञान की शक्ति कम नहीं हुई है निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त मर्यादा में बहुत पक्की नंबर वार तो है लेकिन विशेष आत्माएं पक्की महसूस करती है कि हमारा जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली के
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अखनों की, दूसरी तरफ
3: is something.

Echt?

शस्त्रधारी।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं हो अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 वाइट 10 मिनट का होमवर्क दिया, तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो, अगर 10 मिनट
1: समय
0: 10 मिनट हो तो अच्छे, ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगी। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है न, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अड़चन नहीं। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना भरा सको उतना भरा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? हुआ स्पष्ट?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, ये रायल रूफ के मैमे के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वो ही ठीक है, मैंने जो सोचा वो ही ठीक है, वो ही होना चाहिए। ये मैं बन धोखा दे देता। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित और निर्माण बाउस बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक विचार देने में मालिक बन मेजॉरिटी के फाइनल होने बाद मालिक बन। ये मालिक और मालिक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के तीन शब्द सिक्या के याद रखो। सबको याद है, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो, और सब भूल जाए तो तीन शब्द नहीं बोलो। ये साकार रूप की तीन शब्दों की सिक्या सौगात।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम। इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे, जो भी आपके चेहरे में देखे आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे, फलानी हो फलाना हो नहीं, इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप मुझे व्यर्थ को जलाओ, समृद्ध फरिश्ता नजर है जिसको भी देखे क्योंकि बाप के सिकी लते बचे तो बाप ने आपको खास कहां कहां से चुन

0: स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना फॉलो फादर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Coi pipa.

Buenas noches.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

से खुशी लेके आप भी खुश रहो और दूसरे को भी खुशी दे सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है। अपने से क्या करेंगे।

fishes. Attention to apna aap apna program banao apna

0: पिसी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ, मटक को पिसी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रहो, मन से बिजी, शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर वन बन।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल की मुरलियां

0: चन बनाए। इसलिए अटेंशन बनाए तो टेंशन संस्कारों का कम होता जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा, जब भी टेंशन आवे ना ऐ लगा दो, बस ऐड कर दो ऐ अटेंशन। चलना तो सबको आई, ये तो वायदा है ही पक्का। साथ चलेंगे, साथ राज करेंगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाइए ना, बाप दादा खुश है। लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और चाहिए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सके। अभी कर ली सो कर ली, उस समय फ्रिश्ता लाइफ या अशरीरी बनने का सेकंड में बिंदु लगाने का यही काम में आना और अचानक होना, इसका अभ्यास अगर सेवा भी की लेकिन इसका अभ्यास कम होगा। सेवा में ही लगे रहे, सेवा में लगना है लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारा दे रहे कि अचानक होना है और ऐसी सरकमस्टेंस में होना है, इसीलिए बाप को लेना कोई नहीं थे कि आपने बताया नहीं। बार बार बिना बिना इशारे दे रहे, सेवा का फल मिलता है, सेवा की मार्क्स, क्योंकि चार सब्जेक्ट है ना, तो सेवा की सब्जेक्ट की मार्क्स मिलेंगी। लेकिन और तीन सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट में आपने मार्क्स ले ली और तीन में कम ली तो नंबर क्या मिलेगा? चार ही में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। ये बाप दादा की हर बच्चों के प्रति शुभ आशय।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कम से कम हर एक अपरत वेला तो मनाते हो, जो अपरत वेला रोज जरूर मना।

Harcega, amrit vilika, sadat to apnate, koshish achhi kar rahi ho, amrit viliko main to dete ho, lekin आगे भी जो अमृत वेले में कभी कभी हो वो आगे बढ़ना, क्योंकि अमृत वेला दिन का आरंभ है, उसमें सारे दिन

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है, फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी बिना बिना माया के रूप बन जाती, बाप दादा सदा एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में खुश निमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया। मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय अनुसार जैसे कहां पानी के प्यासी ऐसे
2: Yeah.
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब भी बाप को टाइम मिलता है तो क्या दिल में होता है, मेरे बच्चे लाडले बच्चे, अब बच्चों को टाइम मिलता तो मेरा बाबा ऐसे है ना, ऐसे है, हाथ उठाओ। अच्छा, बोलने की चीज ही नहीं है, कितना भी बोलने की कोशिश करो लेकिन बोलते हुए बोल नहीं सकता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कुछ भी हो जाए

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Watch।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे
जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Kitchen.

Bitte.

Tiens.

सच्चे

संतुष्ट आत्मा के समान।

钱。परेशान नहीं होता।

parte. Mano Ranjan.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हिम्मत कम तो नहीं होती, हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता। बाप मदद देता है लेकिन कैच नहीं कर पाते, फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना तो हिम्मत के आगे और बातें आने भी कम हो जाएगी।

0: अच्छा है, कुछ सोचना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जमा नहीं है।

0: जैसे देखो रावण को मारते भी है, लेकिन सिर्फ मारने से छोड़ नहीं देते, जलाते हैं और जला के फिर हड्डियां जो है वो आज कर तो नदी में डाल देते। कोई भी मनुष्य मरता है तो हड्डियां भी नदी में डाल देते हैं, तभी समापति होती है। तो आप क्या करते हो, ज्ञान के पॉइंट्स से, धारणा के पॉइंट्स से उस बात रूपी रावण को मार तो देते हो, लेकिन स्वाह नहीं करते हो शोक अग्नि में। और फिर जो कुछ हड्डियां बच जाती है नपात की, वो ज्ञान सागर बाप के अर्पण कर दो। तीन काम करो, एक काम नहीं करो। आप समझते हो पुरुषार्थ तो किया ना, मुरली भी पड़ी, दस वाली मुरली पड़ी तो भी फिर आ गई, क्योंकि आपने योग अग्नि में चलाया नहीं, स्वाह नहीं किया। अग्नि के बाद नाम निशान गुम हो जाता है, फिर उसको भी पाप सागर में डाल समापन। इसलिए इस वर्ष
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Because

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन कोई का खेल होता है ना, देखा है कि देखा है या बच्चे करके दिखाते हैं, तो सब समझो कि ये का खेल रही है। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साक्षी होगा, खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं, कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बातें ऐसे होती है जो अज्ञान काल में नहीं होंगे लेकिन ज्ञान के बाद होगी। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, अज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, ज्ञान छोड़ते हैं, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए समझो तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियां के अनुभवी बना। एक सहन शक्ति न्यारपन नष्ट हुआ और दूसरा सामना करने की शक्ति का कि आगे के लिए आप सीख लो। तो ये परिस्थिति, ये तो पाठ पढ़ाने आई है। घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये कमरा तो है, मारो अच्छी तरह से। सब कुछ छूट गया, ट्रस्टी माना, सब पाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा, बस घर का आता है ना तो घर बड़ो। इसको कहा जाता है संप्रत स्वरूप।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

इस कभी

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: योग में अमृत वेले ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग अशांति हलचल बढ़ती है, इसलिए अब एक रखी है, एक परिवार। उसके परमान जब एक परिवार है तो अशांत आत्माओं को कुछ तो चली

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो रोज अपने वेले के बाद देखना, बाप दादा चक्कर लगाएगा, देखेंगे सभी को। तो क्या दिखाई देंगे?

0: ये वाह शब्द भूलना नहीं,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अब ये दो बातें दुनिया में प्रसिद्ध होनी चाहिए। एक गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी नहीं। ये दो बातें धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाए। जैसे अभी ब्रह्मा कुमारियों के बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। जैसे अभी दुनिया में ये प्रसिद्ध हो गई है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारियां मन की शांति, मन की उलझन मेडिटेशन से दूर कर रही है। ये धीरे धीरे अभी कोई भी मन में अशांति वाला समझता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास इसका साधन अच्छा है। धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा ऐसे ये दो बातें अथॉरिटी वालों के पास प्रसिद्ध हो जाए। एक तो अगर सेटिस्फाई हो जाए और ऐसा बेफिक्र होगे कहीं कि ये बात समझने की है, तो धीरे धीरे ये बात फैलती जाए। भाषण तो अभी कहते ही कि ब्रह्मा कुमारियों का भाषण पॉइंट टू पॉइंट होते सुनने आते हैं, समझने लगे, लेकिन मुख्य बात अभी इसका आवाज होना चाहिए। ये तो विशेष बातें हैं। इससे ये सिद्ध हो सकते हैं कि इनको ये सिखाने वाला कौन, तो ऐसा पुरुषार्थ करो कोई अथॉरिटी है जो इनों को सिखाने वाली।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप भी फ्रिश्ता ड्रेस जैसे बिना बिना ड्रेस बदली करते हो ना, वैसे बीच बीच में सारे दिन में ऐसे फ्रिश्ता ड्रेस बदली करके टेस्ट लो ये भी, बस बाप दादा इमर्ज करो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इमर्ज करो, मैं फरिश्ते रूप में हूँ। वस्त्र बदली किया, साधारण से फरिश्ते रूप पहनी और बाप दादा कभी ज्ञान के कभी शक्तियों के कभी गुणों के रंग डाल रहे फरिश्ता ड्रेस पे। फरिश्ता बन के 5-10 मिनट अनुभव करो, फिर वस्त्र बदली कर दो। कर्म योगी है ना, तो ये दिन में जब भी टाइम मिले फरिश्ते की ड्रेस पहन लो और बाप द्वारा ये रंग लग रहे अनुभव अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना फरिश्ता ड्रेस की, तो ड्रेस पहनने से नशा चलेगा और मदद मिलेगी फरिश्ता बनने में। तो होली के ये सौगात बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। ड्रेस पहनते ट्रेल कर देते जाना, बोलना नहीं, फरिश्ता ड्रेस सौगात में दे रहे हैं होली की सौगात। तो बीच बीच में ये अभ्यास करना, सहज है ना, ड्रेस बदलना तो आता है ना, आता है ना। जैसे ये ड्रेस बदलते हो ना, रोज बदलते हो ना, तो फरिश्ता ड्रेस भी बदल के देखो कितनी सुंदर कितनी चमकती हुई। सुना ये ड्रिल भूलना नहीं, वस्त्र बदली करना, दिन में जितना वार फरिश्ता ड्रेस में बैठ सको चाहे 3 मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर, बदली करो जरूर, अभी से संस्कार डालो। फरिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी सबकी बातें कहाँ गई?

समय भी
सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Dealer.

Me.

one kiss, I

no, Gobi. Nerfigen Bana. Hare Ek. Apane. But not.

अपने अपने साथियों को सहयोगी बन, निर्भर

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सब प्रैक्टिकल करके दिखाओ जो गवर्नमेंट सोचे कि ये मत है, बच्चों का कल्याण भी कर सकते। जो भी स्वयं बने हैं वो बच्चों को ऐसे तैयार करे जो गवर्नमेंट को देखने में आवे कि ये क्या कमाल कर सकते। अच्छे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।